FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब होता है हमारी प्रथम सभा का आरंभ।

0: देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं। न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

0: संवेद सुरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार, राष्ट्रीय एकता। वाचन कर रही हैं अंजू पांगती।
1: भारत सबसे बड़ा जनतंत्र देश है। यहाँ के प्रयोग की सफलता असफलता पर जनतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए कहना चाहिए, संसार के प्रगतिशील देशों की दृष्टि भारत पर ही केंद्रित है। भारत भी अपने इस गुरुतर दायित्व को समझता है और जनतंत्र के स्वर्णिम भविष्य के लिए नाना तरीके काम में ला रहा है। राजशाही से एकदम करवट लेकर जनतंत्र में ढल जाना सुगम तो नहीं था, पर ये मार्ग श्रेष्ठ था, इसलिए इसी ओर आगे बढ़ने का संकल्प किया गया। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता, भाषाएं और जातियां, अनेकानेक धार्मिक विश्वास व भिन्न भिन्न रहन सहन के प्रकार, विभिन्न पहलू जनतंत्र की प्रगति में बाधक हो सकते थे। समय समय पर इनके द्वारा अवरोध उत्पन्न हुए भी।

0: हैं, किंतु शनै शनै प्रतिक्रियावादी तत्वों का नरसन भी हो रहा है। और प्रगति को अपनी भुजाओं में थामे हुए हमारा जनतंत्र आगे बढ़ रहा है, लेकिन धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण, इनको आधार बनाकर हम पाते हैं कि एक व्यक्ति के अतिरिक्त बाकी सब कुछ समाज है और व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित है। आज व्यक्ति और समाज के जीवन में विरोध उत्पन्न हो गया है। व्यक्ति और समाज की मर्यादा क्या है? व्यक्ति गौड़ है या समाज? इनमें श्रेष्ठ कौन है? व्यक्तिवाद समर्थक कुछ लोग समाज को जड़ समझते हैं। समाज जड़ है और व्यक्ति चैतन्य, ऐसा कहकर व्यक्ति चैतन्यवाद का प्रतिपादन करते हैं। मेरे बाल गिर गए, हाथ टूट गया, आंखें चली गई और दांत गिर गए, इतना ही नहीं, एक फेफड़ा भी बेकार हो गया, लेकिन ये फिर भी जीवित है क्योंकि पृथक रूप में एक एक अवयव जड़ है। किसी एक अवयव के नाश से सर्वनाश तो नहीं होता ना? सामुदायिक शरीर चलता ही रहता है। इस प्रकार ये दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। आप जिस दृष्टि से देखेंगे वैसा ही अनुमान लगाएंगे। व्यक्ति और समाज में वास्तविक भेद नहीं किया जा सकता। किसी कमरे के दो भाग करने के लिए अगर पर्दा लगाया जाए और पर्दा हवा में उड़कर आगे पीछे होने लगे, तो कभी वो भाग बड़ा मालूम होने लगेगा और कभी ये। हवा की लहर पर उस कमरे के भाग अवलंबित हैं, स्थायी नहीं है। गीता कहती है कि सब मिलकर अपने अंतःकरण की शुद्धि रखें और मर्यादित रहें और फिर देखें कि हम वस्तुतः क्या हैं। फिर व्यक्ति व समाज के हितों में कोई विरोध न होगा। राष्ट्र के व्यक्ति सब आपस में एक हैं। राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र के व्यक्ति। जिस राष्ट्र में ऐसे ज्ञान व आचार संपन्न व्यक्ति नहीं है, उसे राष्ट्र कैसे मानेंगे?
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, राष्ट्रीय एकता। वाचन कर रही थी अंजू पांगती। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर श्रीकांत परगांवकर का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण।

रात्रि 8 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्थित आकाशवाणी केंद्रों से प्राप्त रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें, विषय होगा तिल की खेती। प्रातः 9:30 पर होगा ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा रिपोर्ट 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, क्या खोया क्या पाया। रतन कीर्ति से ये बातचीत आप सुन सकेंगे। साथ ही होगी विशेष जानकारी हरियाली तीज के विषय में, जानकारी देंगी सुनीता शर्मा। प्रातः 10 बजे का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद बिस्मिल्ला खां के शहनाई वादन का। सखी सहेलिन को पर्व हरियाली तीज, ये रूपक आप सुन सकेंगे प्रातः 10:30 से। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 12 बजे। 12:30 का समय रहेगा बनवारी लाल शर्मा के गाए हुए ब्रज लोकगीतों का। 1:15 पर होगा बहनों का कार्यक्रम घर अंगना। कार्यक्रम में आज होगी चर्चा स्वतंत्रता दिवस और हर्ष उल्लास को पर्व हरियाली तीज। साथ ही सुनेगा वार्ता ब्रज में सावन के तीज त्योहार। वार्ताकार होंगी सुषमा सारस्वत। साथ ही आनंद लेंगे लोकगीतों का। दोपहर 2:30 पर होगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी स्वतंत्रता दिवस और श्री अरविंदो जयंती पर। साथ ही होगा रूपक स्वाधीनता का स्वर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त पर दिए भाषणों पर आधारित ये कार्यक्रम। संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद भागवत कथा में वामन चरित्र का प्रसंग। कथाकार होंगे कृष्ण बिहारी पाठक। संध्या 6:30 पर होगा मथुरा नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संध्या 6:50 पर किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी होगा संध्या 7:31 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से। सुहाने तराने हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 11:10 पर होगा दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। तिल की खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, ब्रज क्षेत्र में तिल की खेती शुद्ध और मिश्रित दोनों तरीके से की जाती है। अगर तिल की खेती मिश्रित रूप में की जा रही है तो ज्वार, बाजरा और अरहर के साथ इसको उगाया जाता है। इसकी जहां तक प्रजातियों का सवाल है, उसमें T4, T12 और T78 प्रजातियां प्रमुख हैं और ये प्रजाति पकने में करीब 90 से 95 दिन ले लेती हैं और इनसे उपज 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। बीज को बोने से पहले बीज जनित रोगों से बचाव के लिए उपचारित करके बोना चाहिए। 2.5

0: लेती हैं और इनसे उपज 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। बीज को बोने से पहले बीज जनित रोगों से बचाव के लिए उपचारित करके बोना चाहिए। 2.5 ग्राम थीरम 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त रहता है। 1 हेक्टेयर के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो कह सकते हैं कि 8 से 10 ग्राम थीरम 3 से 4 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है। बुवाई का इसका सही समय तो वैसे जुलाई का दूसरा पखवाड़ा था। जल्दी बुवाई करने पर इसमें फाइलोडी रोग लगने की संभावना रहती है। इसकी बुवाई अभी भी आप कर सकते हैं और इसकी बुवाई हल्के पीछे लाइनों में 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आप करें। बीज को कम गहराई पर गिराएं। उर्वरक का इस्तेमाल मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। अगर मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ है तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। 15 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली निराई गुड़ाई के समय दे दें और दूसरी निराई जब आप करें तो बुवाई के करीब 15 से 20 दिन बाद करनी होगी, और इसके बाद आपको एक और निराई करनी है जो कि बुवाई के 30 से 35 दिन बाद करनी होती है। पौधों की आपसी दूरी इस निराई के समय आप 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें। पौधों में 25 से 30% तक फली लग जाएं और बारिश न हो तो उस स्थिति में एक सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। इस तिल की फसल को, खास करके इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर पत्तियों को कीट नुकसान पहुंचा रहा है तो क्यूनल्फास 25 EC की तरल रूप में दवा आती है, इसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा, या आप ये कहें कि 1.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर पूरे पर छिड़काव कर दें तो पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट से सुरक्षा हो जाएगी।
1: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी तिल की खेती के विषय में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: राष्ट्रपतिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रस्य नक्सल उन्मूलनम् एका ऐतिहासिकी सफलता अस्ति। सा प्रावोचत् यत् यानि क्षेत्राणि पूर्वं नक्सल आतंकेन प्रभावितानि आसन् तेषु क्षेत्रेषु इदानीम् उत्साह संततिः विकास प्रवाहश्च दरीदृश्यते।
0: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
1: राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् छात्रवृन्दः राष्ट्रभविष्यस्य मुख्यशिल्पीवर्गः अस्ति। परीक्षाव्यवस्थायाः परिष्काराय च शासनं प्रतिश्रुतमस्ति। राष्ट्रपतेः अनुसारं भारतस्य 65% युवजनसंख्या राष्ट्रस्य मुख्यशक्तिः अस्ति, या स्वप्रयासैः उद्यमितायाः नूतनान् मार्गान् रचयति। अनेन भारतं 47.2% वर्षं यावत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं साक्षात्कर्तुम् अग्रसरति। उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णन् अवोचत् यत् राष्ट्रपतेः स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्वसंध्यायां एकः शक्तियुतः प्रेरणादायी च सन्देशः दत्तः, यः एकस्य आत्मविश्वासपूर्णस्य प्रवर्धमानस्य जीवन्तभारतस्य च आकांक्षाः प्रकटीकरोति। सामाजिकान्तर्जालीय स्वीये सन्देशे राधाकृष्णन् इत्यनेन प्रोदीरितं यत् राष्ट्रपतेः सम्बोधने यूनाम् आशाः, नारीशक्तेः योगदानं, देशस्य आर्थिकप्रगतिं च संस्पृश्य एकस्य सशक्तस्य समृद्धस्य च राष्ट्रस्य व्यापकं दर्शनम् उपस्थापितम्। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् एते रवाः राष्ट्रयज्ञे नागरिक आहुत्यै दिव्यम् आह्वानं सन्ति। देशः अद्य 80तमं स्वातन्त्र्यदिवसम् आचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिके रक्तदुर्गे समारोहस्यास्य नेतृत्वं करोति। समारोहस्य अन्तर्गतं भारतीय वायुसेनायाः द्वे MI-17 इत्येते विमाने आयोजनस्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रियध्वजारोहणं 21 भुशुण्डिकानां निनादेन सह समन्वितं भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रशासनेन दूरदर्शनवाहिनीनां कृते 12-निमेषपरिमितां विज्ञापनावधिसीमां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचनाप्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शनप्रसारणक्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्यावश्यकता अनुभूता। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण।
3: अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रही हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
4: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। अशीतितम स्वतंत्रता पर्वणः पूर्व संध्यायाम् अमृतेन संभाषणेन राष्ट्रमभिसंबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः प्राह यत् जागतिक अशान्तेः युद्ध विभीषिकायाश्च तमसि अपि भारतीया अर्थव्यवस्था उज्ज्वल नक्षत्रवत् तीव्रतमगत्या समेधते। राष्ट्रपतिना प्रोदीरितं यत् भारतस्य आर्थिक संवृद्धिः वैश्विक संवृद्धिमतिक्रम्य द्विगुणाधिकं यावद् वर्तते।

0: आईएसआई मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि बीआईएस आईएसआई मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1455।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चले।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से